आखन लगे सानू ते दस के नहीं गई। अगे भी जांदी है उन्हां आख्या जी सानू ते कोई भी नहीं पता, असी ते कदी भी राणी नू जांदिया नहीं देखिया। मन विच भरम हो गया राणी किथे जांदी है मैनू दसण तो बगैर। अज दूजा दिन होया इन्हें सोचिया भई हुण मैं रात नू ख्याल रखना है, सौना नहीं, देखना है राणी जांदी।

रंग न लाए, संता से भी रंग न लाए, साकत संग विकर्म साकत संग विकर्म कमाए। दुर्लभ देह कोई अज्ञानी, उज्जड़ अपनी

नाम जपन वाले अभी पीछे भी शोभा, हूं भी शोभा हो रही है, तेरे दी दुनिया तक शोभा होती रही। जिन हर मन वसिया से दर साचे, दर साचे सचियारा, उना दी शोभा सारे जगो न, उना दी शोभा जुग जुग होई कोई न मेटन हारा। जिन्हां ने नाम का आसरा लिया, अपने धर्म लई आपा कुर्बान कर दिता, फिर उन्हां नूं कोई मेट सकदा कोई न मेटन हारा। ते माया की शोभा अज मरातबा है, अज चार पैसे हन तो लोग तैनू सलामा कर रहे हैं, कल जो नहीं रहेंगे तैनू कोई मुंह ही नहीं लावेगा। ते जे पदार्थ सदा लई तेरे पास रह नहीं गए, कोई मरातबा तेरे पास रह नहीं गया, तो तू कितना कुछ बैठा रहेगा भाई, आखिर तो जाना ही है ना। चाहे बेमुख होके जावे ते चाहे गुरु वाला बन के जावे, जो गुरु वाले बन के जाते हैं उन्हां दा मुख इत्थे भी उजला ते दरगाह विच भी उजला, ते जिहड़ा बेमुख होके मरदा तिन्ना मुख डरावने जिन्हां विचारियो नाओ, इत्थे दुख घनेरियां अगे होर ना था। गुरु तो बेमुख होके पहला तो तू अपना मनुष्या जन्म ही नरक बना लिया, ते अगे जाके तू भी नरक फिर तैयार है विचार भी करो श्री भाई। भाई साहब गुरदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, पारी हुई अकीर्त खन मंदी हूं मंदी, धरती ने पुकार की है निरंकार में बड़ी दुखी हूं। आवाज आई तेनू किस गल का दुख है, जे पहाड़ा का पार है तो हो चुक लेना हा, जे बनस्पति का पार है तो बनस्पति चुक लेना हा, नदी दरियावां का पार है वो उठा लेना हा, जीव जंतुओं का पार है वो चुक लेना हा, तेनू किस गल का पार है। धरती ने पुकार की जलो अकीर्त खन मेरे से कदम रखदा है, मैं सड़ जाती हूं, मेरी छाती सड़ जाती है। अकीर्त खन कौन है, जो दाता सदगुरु को प्राप्त करे ते फिर

निकी निकी बच्चियां पटलौन पा के छड़ देता गया। मनुखता जल्दी रोई पर किसी ने दया नहीं की। पत्थर दे पुजारी सन, पत्थर हो चुके सन, ते पत्थर दे अखां विच कदी आंसू नहीं आउंदा। सावर पावे सारा जगत का ही खून बह जाए, पुजारन करो तेरी वाले। सारी प्रकृति तो रो रही होगी, कुदरत रो रही होगी। जदों बेगुनाह नूं मारिया जा रहा सी, पर ए पत्थर पत्थर दे इंसान इन्हां दीआं अखां विच आंसू नहीं आए। पुजारन करो तेरी वाले। एक नहीं सिमरन भजन, दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। आ दुनिया से राज करने वाले आ, जे तेरी हाथ में कलम है तो तेरे पीछे भी कोई खड़ोता है। जे तू रहम की कलम वाहेगा तेरे पे भी वो रहम की कलम वाहेगा, ते जे तू जुलम की कलम वाहेगा तो तेरे पीछे भी कोई खड़ोता है। इसलिए जा सिकदार है पवे जंजीरी, चाकर दत्तों मरना।

गुरु की संगत आप आत्मरस कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कार योग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नू कीर्तन सरवन करा रहे हन। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आओ आनंद मानिए की

कवन कवन गुण कह कह गावा, तुम साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ, तुम ठाकुर ऊच भगवाना।

मेरे मन विच तांग होवे कि मैं जाके तेरे दर्शन करा। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह।

उल्टी प्यारी तुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पीठ ना हो जाती। साथ सगत बोलो श्री तुरते हुए पिछली प्यारी अदा।

के बादशाह पिठ हो रही है हुण इथों दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना व्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पावन।

ए ख्याल रख तेरी सेवा और तेरे नितनेम विच फर्क ना पवे तां बख्शीशां दा हकदार होवेगा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह इस शब्द विच बख्शे।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन करते हैं, ध्यान देना बाणी में पातशाह आखदे हैं।

शुभ कर्मन ते कबहू न डरो न डरो अरसे जब जायल निश्चय कर अपनी जीत अरसे को अपने ही मन को ए लाल चह गुण जब आपकी औ दिन दान बने अधीरन में।